0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ ஃப்ரம் ரெயின்போ வின் கெட் செட் கோ. நேரம் 10:33 ஆயிடுச்சு. மக்களை நிகழ்ச்சியில கடைசி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்த ரொம்ப ரொம்ப ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கேள்விதான். பங்களா என்பது எந்த இந்திய மாநிலத்தின் புகழ்பெற்ற திருவிழா? அதுக்கான விட சொல்ல ஒரு நேரம் காத்துட்டு பேசலாம். வணக்கம்.
4: வணக்கம் சார்.
3: வணக்கம் சொல்வது யார் இங்கிருந்து?
4: ஹேமலதா, கள்ளக்குறிச்சியில இருந்துங்க சார். நல்லமா இருக்கீங்களா?
3: சூப்பரா இருக்கு ஹேமலதா மேடம். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க?
4: கிளைமேட் சூப்பரா, மேகம் கருக்குது.
3: சந்தோஷமா இருக்கீங்க? சந்தோஷமா. கேள்விக்கான விடை என்ன?
4: மேகாலயா.
3: மேகாலயாவா?
4: ஆமாங்க சார்.
3: இப்ப வங்களா என்றது வந்து மேகாலயாவுடைய ஒரு

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे

0: भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: இரண்டு மணி 57 நிமிடம் 18 நொடிகள். இதேபம் ரெயின்போ புதுவை 102.8 காலத்தை வென்ற கானங்கள் நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக பாடல் கேட்கலாம். இளமை ஊஞ்சல் ஆடுகிறது படத்திற்காக SP பாலசுப்ரமணியம் மற்றும் வாணி ஜெயராம் குரல்களில் பாடல்.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।